तुझे जो तुम्हें हाथ तो इतना रखने में और मैं उन्हें फानो उड़ा देना बस सुनाई ने आदरे क्या नहीं माई ने आदरे करने को तो हितना हुआ एक है ना वे नहीं गौन दे अकरान है भाई तीन बोले चुटक ने पाविच करान ना खाओ रुत्ते नहीं फाना देने आने पा तेरु मकने